0: सलाम अलैकुम खान बाबा, ईद मुबारक।
1: वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद? विलायत,